0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियत एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
4: सिटी FM 89।
5: यू आर लिसनिंग टू
6: नॉन स्टॉप हिट्स।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: City FM 89. We're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: MCB1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में जैसे कि फ्री चेकबुक फ्री बैंकर्स चेक फ्री SMS अलर्ट्स फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं MCB बैंक फॉर लाइफ
3: City FM 89
4: We are playing your song
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
8: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: your song. Only on City FM 89. It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
3: Trending today.
4: At WWDC 2026, Apple unveiled the new AI-fied version of Siri in what has been called the assistant's biggest and most dramatic transformation in the company's history. In addition to the launch of its new Siri AI system, the personal assistant now has its own standalone app. The app is designed to serve as a warehouse of the user's previous archived conversations with the assistant.
5: एक दो तीन येलो एक दो तीन येलो
6: ये क्या है भाई
5: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो तो क्या समझी
7: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
8: नाइन जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी मौका अभी भी बाकी है अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना
9: शराय तो जवाबित लागू है
2: सिटी एफएम 89
8: You're listening to
10: Non-stop hits.
11: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you, and the music.
8: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
3: Ye kya hai, bhai?
4: Ek, jacket, shoes ho ya watch. Jo chahe select karo. Do, Jazz Cash par yellow se payment karo. Aur teen, yellow se apni payment ko 3 installments mein break karo. तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
1: सिटी एफएम 89.
5: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
6: शराय तो जवाबित लागू है.
7: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
8: द ओल्ड कम्यूट इज ब्रोकन. We're just here to help you override it.
9: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
10: A new era begins.
1: City.
0: City FM.
1: 89. You're listening to
11: Nonstop Hits.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
1: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: We're playing your song.
4: Attention, the standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
4: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
4: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
5: your evenings just got an upgrade.
6: The rush hour with ABD.
4: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
5: Tune in or get left behind.
7: City FM 89.
8: Sounds different.
0: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 4 p.m.
4: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
5: Trending today.
6: At WWDC 2026, Apple unveiled the new AI-fied version of Siri in what has been called the assistant's biggest and most dramatic transformation in the company's history. In addition to the launch of its new Siri AI system, the personal assistant now has its own standalone app. The app is designed to serve as a warehouse of the user's previous archived conversations with the assistant.
7: City FM 89.
8: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इनश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इनश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
9: वी आर
2: सिटी एफएम 89.
10: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस फॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें. जैस सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
11: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: City FM 89,
3: your drive along companion.
4: Follow the 20-20-20 rule. Every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds to refresh your eyes.
5: Brought to you by Dettol. City FM 89.
2: On the dial.
6: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
7: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
8: A new era begins.
9: City FM 89.
2: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: ने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
2: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
5: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: City FM 89.
7: On the dial. You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
3: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
4: Ye kya hai, bhai?
5: Ek, jacket, shoes ho ya watch. जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 installments में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
6: क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ डिस्टेंट थ्रेट, इट इज हियर. It is now. And with leadership comes responsibility. At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress, it should help protect the future. OGDC, carrying the greater responsibility. Breathe Pakistan. Supported by OGDC.
7: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
8: MCB One Current Account. Har Pakistani ka ek account. Jo de raha hai banking ki beshumar sahuliyat ek account mein. Jaise ke free checkbook, free banker's check, free SMS alerts, free intercity transactions. फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ. तो आज ही MCB One करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं. MCB बैंक फॉर लाइफ.
9: यू आर लिसनिंग टू सिटी FM 89. वी आर
10: प्लेइंग योर सॉन्ग.
1: यू आर लिसनिंग टू
11: नॉन स्टॉप हिट.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
3: Dulux, Dulux, Dulux.
4: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
5: Ye kya hai bhai?
4: Ek, jacket, shoes ho ya watch. Jo chahe select karo. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
1: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
6: अवेल अप टू 50% ऑफ एट द डाइनर्स मिड सीजन सेल Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: Move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 7:30 PM.
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
5: ये क्या है भाई?
6: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
8: अवेल अप टू 50% ऑफ एट द डाइनर्स मिड सीजन सेल। Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
9: City FM 89. We are playing your song.
10: You're listening to
11: Retro 89 with Amir Nasir.
12: Hey, Amir, you probably are glued to the television with the World Cup football. Oh, yes, actually I am, but it's difficult catching the midnight one and, of course, the 3 a.m. one, where Brazil was it a bit of a shocker? Well, not really. This is not the strongest Brazilian side, so it was really expected. And Carlo Ancelotti has to be told that club-level cricket is something else, but when you're playing for against nations, it's a totally... But there's a big one going on. There's a Women's World Cup T20 going on. There's a big match going on. When I say big for Pakistan, that means they're playing the Indian women. And I think they were 67 for 2 last when I heard that one. Hang on. No, didn't blush. Steve Winwood. Wow. Yeah, Steve Winwood I'm playing as a request. So many memories. Please play Back in the High Life by Winwood. I'll tell you what. Just because of you, I'm going to make an exception and play Steve Winwood again. But this is going out to Sonal. Sonal, this is Betty Lavette with Steve Winwood. And you'll have to jack up the volume for this one. Betty Lavette, she's probably 80 years old by now and still singing. I hope you enjoy it. Like I said, jack up the volume for this one.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: 1, 2, 3 ये लो, 1, 2, 3 ये लो।
5: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2, जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और 3, ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
0: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
2: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
8: City FM
9: 89.
10: When I grow up, I want to be strong.
11: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
10: I want to learn big things.
11: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
10: I want to be the fastest.
11: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
10: I want to grow up like everyone else.
11: Because every child deserves a chance to grow, learn and thrive. Act now for the foundations of our nation.
12: Nurture today, strengthen tomorrow.
11: Act, a Dawn Media Initiative.
13: 89.
2: We're playing your song.
11: You're listening to
14: Retro 89 with Amir Nasir.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
5: ड्यूलक्स, ड्यूलक्स, ड्यूलक्स।
6: 1, 2, 3 येलो, 1, 2, 3 येलो।
7: ये क्या है भाई?
8: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो। तो क्या समझी,
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
8: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
10: अवेल अप टू 50% ऑफ एट द डाइनर्स मिड सीजन सेल। हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सिटी 89,
11: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
12: Attention, the standard commute has been decommissioned.
13: Introducing a system override for your ears.
14: New energy, new perspective.
15: The same 24 hours, but a completely different vibe.
16: Join ABD as he takes over the streets.
17: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
18: your evenings just got an upgrade.
16: The rush hour with ABD.
19: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
18: Tune in or get left behind.
0: City FM 89.
1: On the dial. You're listening to
0: Retro 89 with Amir Nasir.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
4: Coming up next.
0: Non-stop hits.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: At WWDC 2026, Apple unveiled the new AI-fied version of Siri in what has been called the assistant's biggest and most dramatic transformation in the company's history. In addition to the launch of its new Siri AI system, the personal assistant now has its own standalone app. The app is designed to serve as a warehouse of the user's previous archived conversations with the assistant.
0: City FM 89.
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
9: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
10: शराय तो जवाबित लागू है।
11: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
12: ये क्या है भाई?
11: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
13: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
11: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: पाती है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: सिटी FM 89
3: 1 2 3 येलो 1 2 3 येलो।
4: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैज कैश।
5: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: City FM 89.
7: We are playing your song.
8: You're listening to
9: Non-stop hits.
10: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you and the music.
11: Back to back starts now.

0: your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: At WWDC 2026, Apple unveiled the new AI-fied version of Siri in what has been called the assistant's biggest and most dramatic transformation in the company's history. In addition to the launch of its new Siri AI system, the personal assistant now has its own standalone app. The app is designed to serve as a warehouse of the user's previous archived conversations with the assistant.
7: City FM 89.
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: City FM 89.
9: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
10: शराय तो जवाबित लागू है।
11: You're listening to City FM 89.
12: 1, 2, 3 येलो, 1, 2, 3 येलो।
13: ये क्या है भाई?
12: 1, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
14: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
12: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
15: When I grow up, I want to be strong.
16: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
15: I want to learn big things.
16: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
15: I want to be the fastest.
16: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
15: I want to grow up like everyone else.
16: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
17: Nurture today, strengthen tomorrow.
16: Act, a Dawn Media Initiative.
5: City FM 89.
1: You're listening to
5: Non-Stop Hits.
18: No talk.
19: Just you
18: and the music.
19: Back to back
18: starts now.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
5: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: City FM 89.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
4: City FM 89.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m.
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
7: No talk. Just you and the music.
8: Back to back starts now.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: City FM 89.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी जानने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा, ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें, सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें, नंबर बंद या सस्पेंड ना होने दें, व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल ना करें, ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। राब्तों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम राब्तों को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप वेरिफिकेशन या एक 6 हिंसों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो। ईमेल एड्रेस जरूर शामिल करें। ईमेल शामिल करने से पिन दोबारा सेट हो सकता है, अकाउंट तेजी से फॉल हो जाता है, हैकिंग के इम्कान कम हो जाते हैं। तस्दीकी कोड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे पैगाम दोस्त का हो या किसी अदारे के नाम से हो। कोड शेयर करना सीधा अकाउंट हैक होने के बराबर है। जाली लिंक्स और ऑफर से बचें। मुफ्त इंटरनेट इनाम, सरकारी या बैंक के जाली पैगाम से होशियार रहें। ऐसे लिंक्स पर क्लिक ना करें। व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेस चेक करें। सेटिंग्स, लिंक डिवाइसेस, अगर कोई नामालूम डिवाइस नजर आए तो फौरन लॉग आउट करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें। अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा। पिन, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें। याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं बल्कि ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से होती है। थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं।
4: सिटी FM 89.9. Follow the 20-20-20 rule. Every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds to refresh your eyes. Brought to you by Dettol.
5: FM 89, your drive along companion.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.